0: सुन सुनो धड़कनों धड़कनों की जवा मैं यहाँ हो यहाँ कैसे सरहदें कैसे मजबूरियाँ मैं यहाँ हो यहाँ
1: जानम